रहा था जैसे सब कुछ सपना हो, ये पहाड़, ये लोग, ये पेड़, ये हवा, ये रावी सब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा चार दिन का नहीं,